करिया। उड़े उड़े आवे सह कोसा तिस पाछे बचरी शरिया। तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया।

रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पै शंकर कैठा। सिगरी सृढ़ दिखाय चंपव, आजुगा स्वरूप स्वयं पव। अवरक्षा मेरी तुम करो, सिख वार सिख संघरो। दुष्जते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख्त हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट न आए हैं।

चौपाई। संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस पुन तीन कहिजय। भाद्रव सुधि अष्टमी रविवारा तीरस तदुरव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रो पखयान त्रिया चरित्रे मंत्री पूप संबादे। 405 चरित्र समापत मस्त शुभ मस्त अवजुं दोहरा। दास जान कर दास पर कीजै कृपा अपार। आप हाद राख मोहे मन क्रम वचन विचार चौपाई। मैं नांगने से प्रथम नाऊं किसन विसन कब होने त्याऊं। कान सुने बहचान तिन सो लिवलागी मोरी पग इन सो।

दोहरा। जब आए इस प्रभु को पयो जन्म तरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कैद सुनाए कवे वाच दोहरा।

ते चौपाई। जो ये कथा सुने अर गावै, दुख पाप ते निकट न आवै, बिसन भगत की ए फल होई, आद ब्याद स्वै सकै न कोई। संबत 17

पूरन कियो। रघुवर कथा प्रसंग दोहरा। साध असा जानो नहीं बाद सुबाद विवाद, ग्रंथ सकल पूरन कियो, भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को अंक तरे नहीं आन्यो। राम रहीम प्राण कुरान, अनेक है मत एक न मान्यो। सिमर शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कह हम एक न जान्यो।

शिप शिप नहीं बचता, सागर हो गया, परमात्मा हो गया, रब। एथे तक पहुंचना है, एथे तक। रूहे जमीन ते आमदा इको ही मकसद है कि गोविंद मिलन की यह तेरी बढ़िया बार। लेकिन जे किधरे ये मनुख अपनी वारी तो जो है सुस्त हो गया, नहीं पहुंच पाया, दोबारा फिर आना पे, दोबारा फिर आना। मैं छोटा जहा उदाहरण आप जी के सन्मुख रखा, गल पकड़ भी आ जाए, गल समझ आ जाए। एक अन्ने मनुख नू, क्योंकि ये जो विचार आप जी के मैं सन्मुख रखता पे, एक गुरमुख प्रेमी कैलगरी दे विच गुरमुख जा रहा है, सुमेल सिंह नाम है उहदा, बहुत मेहनत करता है वो। ते ए जिथे जिथे भी कथावां हुंदियां ने उन्हां दी, फिर उसे टॉपिक का एक ऐसा माहौल तैयार करता है तस्वीर दे विच, वो तस्वीर बना के उहदे विच ही फिर वो कथा ऐड कर देंदा है, फेसबुक पर जान देंदा है। जे सिद्धां नाल गल हो रही है गुरु नानक दी, ते फिर गुरु नानक ते सिद्ध इन्हां दी तस्वीर बना के ते ख्यालात संगतां नूं समझ आ जाण, तस्वीर देखण दे नाल ही गल समझ आ जाए कि विशा की चल रही है। तो मैं अर्ज करा कि एक अन्ने मनुख नूं आख्या कि तैनू एक ऐसे कमरे विच बंद किया हो जिथों तू बाहर निकलना है। ते ओ अन्ना पुरश कहता है फिर मैनू छड़ी तो दवोगे, स्टिक तो दवो? कहें हाँ दवांगे। पर ध्यान नाल सुनना, क्योंकि ये मौका कदे कदे बनता है। जदों उसनों स्टिक दिती गई, छड़ी दिती गई, और उस कमरे के विचकार उसनों खड़ा किया और कहा इतना वक्त है तेरे कोल, तू बाहर निकलना इस कमरे चो, इतना वक्त है। वो अपना सफर शुरू कर दे छड़ी। पहला तो वह तुरदा जा रहा है, सीधा ही तुरदा जा रहा है, तो सीधा ही जाके वो दीवार नाल उहदी छड़ी लगती। हुण उस दीवार नूं पकड़दे टटोलदे, देखदियां देखदियां दीवारां नूं टटोलदियां टटोलदियां आखिर बुआ तां आएगा। दीवार नूं टटोलदियां टटोलदियां वो बूए दे करीब पहुंच जांदा है। लेकिन मालिक दी खेड ऐसी होंदी है कि उहदी पिठ ते खुरक शुरू हो जांदी है, पिठ ते। हुण उसे छड़ी नाल उसे स्टिक नाल अपनी कमर खुजांदा है, कमर खुजांदा है। और फिर उस स्टिक दे नाल फिर वेखदा है, जिवें ही वह कमर खुजांदा है इन्नी देर विच वह बूआ निकल जाता है, आप थोड़ा जिहा अगे सरक जाता है, फिर दीवार आ गई, फिर दीवार टटोलदा है, टटोलदियां टटोलदियां फिर वापस जदों बूवे कोल आउंदा है खुरक फिर शुरू हो जाती है। ये प्रयोग किया कुछ दार्शनिकों ने, दानसबंद धार्मिक दुनिया के, उन्होंने प्रयोग किया है। और वो सारे दे सारे विद्वान पुरुष हंसते पे ने, कहते हैं वार वार बूए के करीब भी आता है पर फिर खुरक शुरू हो जाती है, बुआ फिर निकल जाता है, फिर निकल जाता। हुण एक गाथा आप जी ने सुनी है, आप जी ने कहना है कि बदकिस्मती उहदी जो कमर दे विच खुरक शुरू हो जाती है, फिर उसे वेले खुरक आनी सी उसनों, बदकिस्मती कहो। एक गाथा उस अन्ने दी नहीं है, गुस्ताखी माफ, एक गाथा साड़ी सारियां दी है, सारी ओके में

पार ब्रह्म प्रभ पाया तुरे सगल विसूरे संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे सलोक दिवस रात द्विधाई दाया खेले सगल जगत करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ध्याया।

प्रभु की दृष्ट महासुख हुए हर पाव विरला कुए जिन चाख सी जान त्रिपदा ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने सुबर परि प्रीम रास रंग उपजा चाव साध कसंग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रकाश आना दिन लेवला गुड पागी जपिया प्रभु सुख नानक नमृत सुख हुए सेवक मन सा पूरी पय साधु कर दिन निर्मल मात लय जन काओ प्रभु हुए दयाल सेवक गिन सदा निहार बंधन काट मुक्त जन पया जन वरण दुख प्रम गया इसने सरदा सब पूरी राव रहा साध संग हजूरी जिसका साथ दिन लिया मिलाई नानक भगति नाम समाय सुख बिसरै जी काल न भन सुख बिसरै जी किया जान सुख बिसरै जन सब किस दिया सुख बिसरै जी जीवन जिया सुख बिसरै जी अगन महाराख गुरु प्रसाद को बिरला लाख सुख बिसरै जी विखति काट जन्म जन्म का टूटा काट गुरपुरा ताति है बुझाया प्रभु अपना नानक जन दिया साजन संत करो हुका मन त्याग जप हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव भाव जप भाव रह नाम जपाव भगत पाय तरिया संसार बिन भगति तन हो शीशार सर्व कल्याण सुख निर्धनाम बूढ़ जात पाय विश्राम सक दुख अवतना स्नानक नाम जप भगवंता सुखजी प्रीत प्रेम राह चाव मन तन अंतर ही स्वाव नियतन पीह दरस सुख मन विकसा साध चरण तुय भगत जनक मन तन रंग बिरला को पावै संगिक बह दूजा करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाय नानक रहिया सर्व समाई प्रभ बखसांदी दयाल भगत वचर सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रत पाल आदि पुर कारण करतार भग जनक प्राण आधार जो जो जप सोय पुनीत भगत पाय लाव मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजा नानक तुम शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाई निम कर के गुण गायन कराय भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई वाह भोजन काबर संगीत रसना जापति हर हर नीत परी सो करणी सुबह धनवंत हृदय बस पूर्ण गुरमन सा संग प्राप्ति हनवै सर्व सुख हनवै।

देह का कर उदार अमृत वचन हर गुण गाय उपरा अंतरन कह स्वाव आठ पहर उपरा पी खाउ निरा मिटया ज्ञान बिन सयान दिरा सन उपदेश हृदय बसाव मन छे नन खर पाव भरत बल दुई देह सवार और राम नामे अंतर वरतार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसा ते सच प्रीखिया मंत्र नाम जप हरे बलाय दुख दर्द मंत्र पाव जाय सच वा पार कर हुआ पारी दर गहन वह की तुम्हारी काटी करख मन वाह नानक बहर न आवह जाहे दिखते दूर कहक जाय उबरा रख नार त्याय निर पाओ जप सकल पाव मिटा प्रभु कृपा दे प्राणी छोटा जेह प्रभ राख दह नाह दुख नाम जब मन बुद सुख चिंता जाय मिट अहंकार दिह जन को कोई न पहचन आर शिरु पुर ठाडा गुरु सूरा नानक ताकि कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पीखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनुगूप सफल दर्शन संद्रहारूप तन सेवा शिव प्रवान अंतर जामपुर प्रदान।

विनाश ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपाति संत पेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपति संत संग अंतर प्रवटीठा ना प्रभु करा गमीठा सगद सिमी गिरी एक स्कट माहन करंग नाना दृष्टा ही नाव निध अमृत प्रभु का नाम दिहि मैस कवि श्राम सोन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज विस्मय तिन दिखै सब दिखाई नानक तिह जन सोजि पाए स्वांतर सो बाहर अनंत काट काट व्याप रहिया भगवंत तरन माहि आकाश पायार सर्वलोक पूर्ण प्रत पार बंत इन पर्वत है पार ब्रह्म जैसिया गत सकर्म पावन पाणी वै संतर माहि चार कुंत दह दिशि समाहि दिह दिपिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नान सुखा वीत प्राण सिमरत मह दीख ससियर सूर्म किया तर मह एक वाणी प्रभु के सबको बोलाए आप अडोल न कब हुटोला सर्व कलाकार खीर खीर मोल न पाई है गुण है अमोर सर्व ज्योत मह जाग ज्योत तारहि स्वामी होत पोत गुरु प्रसाद ब्रह्म का नास नानक ते नमह हु विश्वास संत जना का बीखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुनह सो वचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी हरहत सत वचन साधु सब कहत जो जो हो सो सुख मार न करम कराव नार प्रभु जान अंतर वसे बाहर भी ओहि नानक दर्शन दे सब ओही अब सत किया सब सत ते प्रभु ते सगरी उत्पाद ते पावे न करे विस्तार ते पावे न एक अंकार करा रखे न जाय जिस पावे ते लय मराई कवन निकट कवन कहिया दूर आप आप पार पूरा अंतर्गत जिस आप जनाई नानक ते जनाय बुझाए सर्व पूता वर तारा सर्व नयन आप भी खनार सकल समग्री जाकर तना पंजा साहबी सुना आवन जाने खीर बनाया आ गया कर कि माया सब कमा दर तो रह जो कहना सो आप ही कह आ गया आव आ गया जाय न जा पावत नाय समय उसते हुए सो ना ही बोरा ओरा कहु कि न काश करा परा कर तू तात निकिया बजाने अपने जी किया साच तारे सब साच ओत पोता अपना संगराच ताकि गात मित कहीं ना जाए दूसरो ये ना सोजी पाए तो सक किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक की हो जान जो जाना दे सदा सुख हो या मेरा ये प्रभु सोयो हो धनवान।

सदर यतन का साथी शरण जोग संसरणी आय कर कृपाय प्रभा मिलाई मेट गए वैर पय सबरी अमृत नाम साथ संग्रह सुप्रसन्न पय गुरुदेव पुनो शिव किसी वाल जंजाल विकार ते रहते राम नाम संरचना कहती कर प्रसाद दया प्रवतार नानक निभि खेप हमारी प्रभु की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जह मन बसा सोधन धान सर्विच्छा ताग पूर्ण होय प्रधान गुरु प्रगट सब लोय सब त्यूच पाया स्थान बाहर न होया वंजन हर तन खट चला जन सोय नानक जिस प्राप्त हुई कीम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वदा सिद्ध विद्या तब जोग प्राप्त ज्ञान।

अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, पूजांग प्रयादिशांदम। नमो सर्वमाने समस्ते निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपावणे अनंगीय।

समस्तोपराधिस्मस्तस्तदा मुक्तिराजूर्चाश्रीशान्दम् जले हैं थले हैं अपीत हैं अपी हैं प्रभु हैं अजू हैं अदीस हैं अपीस हैं पूजांग प्रयाद शांदम् अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नो सर्वमाने समस्त निदाने नमस्तु नृनाथे नमस्तु प्रमाथे नमस्तु अगंजे नमस्तु अपंजे नमस्तु अकाले नमस्तु अपाले नो सर्वदेशे नो सर्व

सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं, सदैव अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओम आद रूपे अनाथ स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गं त्रिबाध्ये अगंजे अगाध्ये शुभं सर्वभाग्येषु सर्वा अनुरा

अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छांदोत व प्रसादम सर्वहंता सर्वहंगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वहर्ता सर्वकर्ता सर्वप्राणं सर्वत्राणं सर्वकर्मं सर्वधर्मं सर्वयुक्ता सर्वमुक्ता रसावल छांदोत व प्रसादम नमो नर्गनाशे सदैवं प्रकाशे अनंघं स्वरूपे अपंघं विभूते प्रमादं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामय त्रिपंगी त्रिकामय निरपंगी।

जग जानिया है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास है सर्वनाश्य है करुणा कर है संपर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जाप है थपा थप है कृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है कृता कृत है तरणी त्रित है

लोग चपेंगे। मानव इंद्र के चिंद्रन रातव जो त्रिलोक को राज करेंगे। कूड़ स्नानक जातक दान अनेक सुवंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सती पात अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपद के प्रस हैं पाग ते नर फेर न देह तरेंगे। कहाँ पयो जो दो लोजन मूंद कै बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नहात फिरयो।

कहूँ सबट भयो शंकरी कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाया चम भव आजुगा स्वरूप स्वयं भवन अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवद उत्पाता सकल मलेश करो रणघाता जे अस तुजता विसरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तू संकट सब टारे।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहर सेती मन वजियां वधाइयां राग रदन परवार परियां शब्द गावे।

में जोत जोत है सोए, क्योंकि तू सर्वव्यापक है। सारे अंदर हे परमात्मा अकाल पुरख केवल तेरी जोत है, सब में जोत जोत है सोए। जिवें तू सर्व व्यापक है, सर्व व्यापी है, हर था रमिया होया है, इसी तरह तेरी जोत सारिया विच व्यापी हुई है। तिस तै चानन सब में चानन होए, कहिंदे सारिया अंदर चानन प्रकाश हे मालिक तेरी जोत दा ही है। तिस कै चानन सब में चानन होए, तेरी जोत दा सारिया अंदर प्रकाश है। एक चानन है पर एक गल सतगुरु ने कमाल दी कर दिती, गुरसाखी जोत प्रगट होए। ए जिहड़ी जोत है ना, गुरसाखी जोत प्रगट होए, हुंदी गुरु दी कृपा नाल है, एवें प्रगट नहीं हुंदी। जब तक असी गुरु नूं नहीं ना मिलांगे, ए जोत साडे अंदर प्रगट नहीं हो सकती। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जदों गुरु की कृपा नाल अंदर जोत जग पवे, ते फिर की हुंदा है,

हे निर्गुण स्वरूप, हे दुनिया दे मालिक, हे सृष्टि दे मूल, हे जगत नू बनाने वाले परमात्मा, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया। बड़े बड़े सिद्ध जोगी जती जिन्ना ने तेरा ध्यान ला के, तेरा ध्यान तर के बड़ा बड़ा तप किया, बड़ी बड़ी भगती की, सिद्ध समाध समाधियां ला ला के, पर कहते ने अंत नहीं पाया, तेरा अंत ना पा सके, तेरा अंत ना ले सके। फिर की होया, सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, कहते ने आकर हार के तेरी शरण में आ गए, तेरी शरण में आ डिगे, तेरे चरणा ना लग गए कि हे मेरे मालक, असी तेरा अंत नहीं पा सके। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे सरनाई, लिहो आरती हो पुरख नरिंजन, सतगुर पूजो पाई। भाई जे वो अंत नहीं पा सके, उन्होंने आखिर मालिक दे चरणा विच डिगना पिया, ते तू ही उस लैण ते ना तुरी, तू वो आरती करनी है जेड़ी आरती तेनू गुरु ने समझाई है। केड़ी आरती है? सतगुर पूजो पाई। आप ही अपने गुरु की पूजा कर, अपने गुरु के चरणा ना लग। अगे भगत कबीर जी ख्याल देते हुए समझाते ने, कहते ने, ठाडा बरमा निगम बिचारे। आरती उसकी करनी है जिसके दरबार विच बर्मा वर्गा खड़ा होके, ब्रह्मा बहुत वड्डा देवता है, पर ब्रह्मा भी उसके दरबार विच खड़ा होके वेद विचार रहा है। ठांडा बर्मा निगम, निगम का पाप है वेद। ठांडा बर्मा निगम विचारे, अलख ना लखिया जाए। क्योंकि हे परमात्मा तू अलख है, लखन तो बाहर है, तेरी लीला लखी नहीं जा सकती, तेरे गुण कहे नहीं जा सकते, तू इतना बेअंत है, तेरे गुण बयान नहीं कीते जा सकते। अलख ना लखिया जाए, वो अलख है जो लखिया नहीं जा सकता। अगे भगत कबीर जी कहते ने, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे पुजारा, जोत लाए जगदीश जगाया, पूजे पूजन हारा। कहते ने, हे मेरे मालिक, तेरी आरती दी समझ कोई विरला ही जान सकता है, किसे विरले दी ही समझ ए गल आ सकती है, कोई बूझे बूझन हारा, कोई इस गल नू बुझ सकता है? हर किसे दे बस दा रोग नहीं कि तेरी इस आरती नू समझ सके। हुण कहिंदे ने, ख्याल करना, मैं कल भी जिक्र कर रहा सा, तीन चार चीजां दा दीवा बालन लई तीन चीजां दी लोड़ हुंदी है, तेल दीवा ते बत्ती। पर इत्थे भगत जी कहिंदे ने, हे मेरे मालक, तत तेल नाम की आबादी, मैं जिहड़ा तेल पाया है ना इत्थे, तत दा पाव है ज्ञान। तत तेल, मैं ज्ञान रूपी तेल पाया, नाम किया बाती, कहते ने जिहड़ी विच वट्टी है ना वो मैं नाम दी पाई है, ते इस शरीर नू दीपक बनाया। ध्यान देना, हुण इत्थे दीपक आटे दा नहीं है, मिट्टी दा नहीं है। कईयां ने अपनी समर्था मुताबक स्टील दा, कोई चांदी दा, ऐसे इत आदक दीवे बना लेंदे ने, पर भगत कबीर जी कहंदे ने, हे मेरे मालिक, मैं ज्ञान दा तेल पाया, नाम दी वट्टी पाई है, इस शरीर दे अंदर दीवा बना के कीता की है, तत तेल नाम किया बाती, दीपक दे उजाला। फिर मैं इस तन नू दीपक बना लिया, ते हे मेरे मालिक हुण तू कर कृपा मेरे ते, जोत लाए जगदीश जगाया। ए जोत कदों जगी? जदों असी जगत तारन हार दे नाल जुड़ गए, क्योंकि जब तक परमात्मा नाल जुड़िया ना जाए जोत नहीं जगदी। आ तुसी वेखदे हो कई बार तीन चीजां होण, दीवा बत्ती तेल, जब तक बालन वाला ना ना होवे दीवा नहीं बनता।
दीवा अपने आप कभी नहीं बलिया। दीवे विच एक चीज की भी कमी हो जाए दीवा नहीं बलना। जब तक उन्हें तिना चीजा ना मिलना हो दीवा बत्ती तेल हूं तिना बत्ती कढ़ दियो तेल ते दीवा रह जाए दीवा नहीं बलना। हूं बत्ती विच रख के तेल ना पाओ बत्ती ते दीवा हो दीवा फिर भी नहीं बलता। जे असी कही बत्ती ते तेल का संबंध जोड़ दीए दीवा ना हो दीवा फिर भी नहीं बलता। तिने चीजा ना मेल है पर जे तिने चीजा होन दीवा भी हो बत्ती भी हो तेल भी पा दिता जाए दीवा फिर नहीं बलता। बालन वाला चाहिए भगत कबीर जी कहते ने हे मेरे मालिक ए मेरा दीवा ता बलना है ए जोत ने उजियारा ता करना है जब तक तेरे नाल संबंध नहीं जुड़ना। तेरे नाल संबंध जुड़ेगा तो यह दीवा बलेगा। कर कृपा जोत लाए जगदीश जगाया बुझे बुझना। कोई बिरला इस गल नूं बुझदा है कि यह जिहड़ी जोत है मालिक नाल रल के जगाई जा सकती है। अगे भगत कबीर जी कहते ने पंचे शब्द अनाहत वाचे संगे सारंग पानी पंचे शब्द अनाहत वाचे। ए अनहद वाजी जो मेरे अंदर एक रस एक तार वज रहे ने क्योंकि मालिक तेरी कृपा होगी। पंचे शब्द अनाहत वाजे संगे सारंग पानी जिमें बाणी विच जिक्र आउंदा है पंचे शब्द बजे मत गुरमत वडभागी अनहद बज गया। अनहद यह जिहड़ा अनहद नाद है यह अंदर वजदा है। ते भगत कबीर जी कहिंदे ने मालक तेरी कृपा मेरे ते हो गई पंचे शब्द अनहद वजे एक रस एक तार वज रहे ने। ते ये पंच वाजे कहड़े ने पंच साज कहड़े ने तंती साज ते साध संगत चमड़े नाल मड़े हुए साज ते कुछ धातु दे बने साज ते कुछ कड़ा इत आदक ते कुछ फूक मारन वाले साज। ये पांच प्रकार दे साज ने पंचे शब्द जिन्हां नूं कहिंदे ने पंचे शब्द अनाहद बाजे संगे सारंग पाणी कबीर दास तेरी आरती कीनी नरंग। हे मेरे मालिक तू मेरी ए आरती प्रवान कर लै मैं ते तेरी इस प्रकार आरती सही समझी है। ते साध संगत कल जिक्र चल रहा सी उस आरती दा मन बनिया किसनू संपूर्णता विच कीता जाए। फिर तन्ना जी दा भी जिक्र बड़ा सुंदर चलिया। सैन जी ने बड़ी सुंदर गल कीती धूप दीप कृत साज आरती। सैन जी कहिंदे ने इस आरती नूं करन वास्ते चार चीजां दी लोड़ है धूप दीप कृत साज आरती। धूप अगरबत्ती दीवा ते थाल घ्यो पा के जिहनूं जलाया जांदा है इह चार चीजां जिहनूं कहिंदे ने कठियां हो जाण फिर इह दीवा बाल के आरती कीती जांदी है। लेकिन इह जिहड़ी आरती हिंदू मत अनुसार हुंदी है उहदा कुछ जिक्र मैं अज पढ़ रहा सां। इस प्रकार मिलिया कहिंदे ने चार वरी इह जिहड़ा थाल है ना चरणां ते घुमाया जांदा है चार वरी ते दो वरी इह नाभी तक इस थाल नूं घुमाया जांदा है ते उपरंत एक वार मुंह ते मुख ते घुमाया जांदा है ते साध संगत उस तो बाद सत वार पूरे शरीर नूं बार बार घुमाया जांदा है। ते जेकर ऐसा मिलिया है कि इहदे विच थाल विच जिहड़े दीवे ने एक तो लैके सौ तक रखे जांदे ने। इह नहीं कि एक दीवा एक नहीं एक तो लैके सौ तक इहनां दी गिनती है इह उहनां दी मर्यादा है। पर सतगुरु कहण लगे भाई तू ऐसा दीप बाल जिहड़ा बुझे ही ना हमेशा जगदा रवे इसलिए उन्होंने साड़ी चोली विच ए दान पा दिता। हुण भगत तन्ना जी की कहिंदे कहिंदे ने हे मालिक परमात्मा गोपाल तेरा आरता हे गोपाल मालिक अकाल पुरख मैं तेरे अगे आरता इसलिए कर रहे हैं कि मैं तेरे कोल कुछ डिमांड मंगनी है मैं तेरे कोल कुछ मंगना चाहना हां। हुण लफज आरता क्यों आया है
क्योंकि अगे लफज आरती चल रहा है। यह आरता क्यों है? यह ना समझ लेना एक काव्य रस है। जिवें कवि कोई काव्य लिखता हो ना, उन्हें अपने फिक्रे नूं लवाना होंदा है। हुण अगे लफज की है? गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। क्योंकि लफज तां पूरा हुंदा है। ਇਹ ਦਾਸ ਤੰਨੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਕਿਸ ਲਈ? ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਤੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫੇਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ। ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਤ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦਾਲ ਸੀਤਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ। ਦਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟੇ ਨੂੰ। ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਘਿਓ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਘਿਓ ਵੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੁੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੋ ਕੀਓ, ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਬਣੀਆਂ ਛਾਤਰ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਰਦ ਸੀਕਾ। ਬਣੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਣੀਆਂ ਛਾਦਰ ਨੀਕਾ, ਹੁਣ ਛਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੋ? ਪਨੀਆਂ ਛਾਦਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਨਾਜ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਵਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੀ ਧਰਤੀ ਵਾਈ ਦਾ। ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜੁਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਗਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸੱਜਲ ਸੂਈ, ਸੱਜਲ ਸੂਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਤੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਰਬੀ ਘੋੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗੋ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੁਰੀ ਚੰਗੇਰੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਹ ਡਿਮਾਂਡ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਕਰ ਕੀ ਕੇਹਣ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਤੰਨਾ ਲੇਵੇ ਮੰਗੀ।
भगत ने परमात्मा नू आरती करके खुश कर लिया, इंज कह लो भगती करके खुश कर लिया। जो हुण परमात्मा खुश है, परमात्मा कहिंदा भगता जो मंगी जाएगा दे जाऊंगा, क्योंकि उन्हें अपने वास च कर लिया। कहिंदे ने हुण जिहड़ी डिमांड अज सामने रखी कि अंत विच मैनू घरवाली चंगी चाहिए, क्योंकि घरवाली का बहुत साथ हुंदा भगती विच। जे घरवाली ना चाहे तो खिमा करना भगती बहुत औखी है, बहुत कठिन है। ए जिन्ने भी भगत पंच श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच बैठे ने उन्हां दियां घरवालियां दा साथ है, क्योंकि घरों साथ होना जरूरी है। इसलिए घर की गिहन चंगी जन तन्ना देवे मंगी, तन्ने ने मंग के लई। हुण अगे चलीए, भगत कबीर जी इस आरती नूं कहिंदे होए कह रहे ने कि हे परमात्मा, मैं तेरी आरती इसे लई कीती है कि मैं भी ग्रस्ती हां, मैं भी बाल बच्चरदार हां, मैनू भी कुछ चाहिए। हुण परमात्मा कोलो की मंगे है, भगत कबीर जी बड़ा सुंदर कहिंदे ने, आओ सरवण करिए। सौरठ भूखे भगत न कीजे ये माला अपनी लीजे। भगत जी ने गल बड़े कमाल दी रौंगी, कहिंदे ने हे परमात्मा अकाल पुरख, आला फाण अपनी माला, भुखिया तो भगती नहीं होंदी, क्योंकि मन रजा होवे तन रजा होवे भगती भी फेर ही होंदी है। भुखे तो भगती नहीं होंदी, फड़ ले अपनी माला, मैं नहीं तेरी भगती कर सकता। सोरठ भूखे भगत ना कीजे ये माला अपनी लीजे, फड़ माला। पर कहते नहीं मेरी मंग कैसी है, हाउ मांगो संतन रहना मैं ना ही किसी का देना। कहते नहीं मैं तेरे को मांगना संतां दे चरणां दी धूल, ये मेरे मस्तक ते लग दी रहा है। हाउ मांगो संतन रहना, पर नाल मैं ये भी कहना मैं ना ही किसी का देना, मैं किसी का देना ना हो। कई बार होंदा है कि बंदा भगती ते बैठा होंदा है, लैण वाला बूहे ते आ खलोंदा है, ओ बाहरों बूहा खड़का रहा होंदा है, खोल पई बूहा मेरा देना मैनू दे, कहिंदा हुण किथे मन लगदा है, नहीं लगदा। मैं नहीं किसी का देना, मैं किसी का देनदार ना होवां, किसी का देना ना होवे। फिर कहिंदे नहीं हे परमात्मा ये किवें हो सकदा है, ऐसी गल किवें बन सकदी है। मां तो कैसी बने तुम संगे आपन ते हो तो लेवो मंगे। माधो माधो कहने ने हे माया दे मालक, हे माधो अकाल पुरख, कैसी बने तुम संगे, ए तेरी मेरी बन किवें आ सकती है, तेरा मेरा संग किवें रल सकता है। हुण संग किस लई करना है, आप ना देवो तो लेवो मंगे। जे परमात्मा तू मैनू ना देवे ते तेरा मेरा इन्ना प्यार होना चाहिए, तेरा मेरा इन्ना संग होना चाहिए, जे तू ना नहीं देवे मैं आपे मंग के लैंदा। इसलिए भई आओ, ये है परमात्मा की आरती, उन्हू बंदगी करके रजा लो। वो नहीं ना देंदा, आप मंग लो, क्योंकि साडा उहदा संबंध प्यो पुत्र दा है। पुत्र ने कदी पिता कोलों मंगण लई ग्रेस नहीं कीता, पत्नी ने पति कोलों मंगण लई कदी ग्रेस नहीं कीता, हक नाल मंगदे ने कि हे परमात्मा मेरा तेरे ते हक है, क्योंकि मैं तेरा पुत्र। इसलिए आओ पहले हक बनाइए फिर मंगना शुरू करिए। हुण भगत जी कहिंदे ने मैं की मंग रहे हां,

ज्वाले दोए सिर मांगो चूना चूना कहते ने आटे दो सिर चाहिए पाओ घ्यो संग लूना एक पा घ्यो ते नाल लून भी चाहिए अद सिर मांगो दाले अद सिर दाल भी चाहिए है फिर कहते ने मुको दोनों वक्त ज्वाले दोनों वक्त का काम हो गया दोवें वक्त आराम नाल निकल जाएंगे फिर कहते ने हे परमात्मा खात मंगो चौपाई सहरा ना और तुलाई हे मेरे मालिक एक खाट खाट कहते ने खाट मंगो चौपाई चौपाई का भाव है चार पैर वाली मंजी हुण ओ मंजियां इत्थे ते है नहीं इत्थे ते बैड ही मिलदे ने तुसी बैड कह लो गल ही कोई नहीं है हुण कहिंदे ने भगत जी हे परमात्मा मैं तेरी भगती करन वाला मैं पुजे नहीं सोना पर कई जगह सानू भी पुजे सोना पैंदा है क्योंकि इंतजाम नहीं हुंदा पर ख्याल कर लेना ये भगत जी बाणी विच कह रहे ने ये डिमांड मेरी नहीं है भगत जी है भगत जी कहिंदे ने हे परमात्मा मैं पुजे नहीं सोना खाट मंगो चपाई सराणा और तलाई एक सराणा के नाल तलाई भी चाहिदी है कहिंदे इत्थे ही बस नहीं उमर को मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा हे परमात्मा उपर को मांगो खींदा उपर वास्ते सोहनी रजाई भी होनी चाहिदी है वेख फिर तेरा भगत करे जन थींदा तेरा भगत तेरी भगती कितनी खुशी नाल करदा है साध सकते बिल्कुल सही गल है जदों मनुख नूं खाण लई पहनण लई बहन लई सौण लई थां अच्छी मिल जाए ना वह कहिंदा बस इतों वध होर की चाहिदा है खाणियां ते दो रोटियां ही ने ना खाने ते दो फुलके ही ने ना इतों वध होर की चाहिदा है सही बात है जिस गृहस्थी दियां घर दियां मंगां पूरियां हो जाण साध संगत उहनूं होर कुछ नहीं चाहिदा अंत विच भगत जी ने गल बड़े कमाल दी कह दी कहिंदे ने हे परमात्मा ये ख्याल करी मैं एक भगत होण दे नाते मंग रहा तेरे कोलों कि ते ना कह दी कि बड़ा लालची है सब कुछ ही मंगी जाता है मैं ना ही कीता लभो एक नाओ तेरा मैं फपो हे परमात्मा ये कोई मैं लोभ लालच नहीं कीती ये मत समझी कि मैं लालची हो गया नहीं लालच उसनू कहिंदे ने जिसका ना अगे ना पिछे ना धी ना पुत्र ना कोई साख ना संबंधी कोई भी ना होवे फिर वह माया पिछे भजा फिरे उन्हूं कहो ये लालची है ते जिहदा भाई घर बार है धियां पुत्र ने बाल बच्चा परिवार है साख संबंधी ने सौ किसे नाल आना जाना मिलना करना उन्हूं तुसीं लालची नहीं कह सकते उन्हूं जरूरत कह सकते हो इहदी जरूरत है इहने जो मंग कीती है जरूरत वास्ते मंग कीती पर असी अज लफ्ज लालच वरत देते हैं जी बड़े लालची हो गए ने बिल्कुल नहीं गृहस्थ दियां लोड़ां इतनियां वध चुकियां ने तुसी उनू लालची नहीं कह सकते उहदियां लोड़ां इन्नियां ने आपां अपने वल वेख लिया करिए जे साडियां लोड़ां वध सकदियां ने साडी डिमांड्स वध सकदी है ते भाई किसे भगत दी नहीं वध सकदी उहदी भी वध सकदी है इसलिए ख्याल करना मैं ना ही कीता लभो एक नाम तेरा मैं फपो हे परमात्मा यह मेरा लोभ लालच नहीं है तू वेख मैं तेरा नाम ही ते अपने हिरदे विच वसाया ना हुण जिथे ना वस गया भगत जी कहिंदे ने नाम नूं मुख रख के सब कुछ मंग लो परमात्मा देण नूं तैयार ने फिर कहिंदे ने कहत कबीर मन मानिया मन मानिया तो हर जाने बस ओ परमात्मा साडे हिरदे विच वस गया उसकी यही आरती है ओदी रजा विच आ गई है ओदे हुक्म विच आ गई है जिवें ओ रखदा जिवें ओ चलांदा है जिहड़ा उहने मार्ग रस्ता बनाया है उस ते चल पईए भगत जी कहिंदे ने साडी आरती है इसलिए आओ तुझ बुद्धि अनुसार सेवा कीती प्रवान कर लेना कि इसनू याद कर लेना कि गुरु अगे आरती गुरु दी पूजा साडी श्रद्धा साडी पावनी साडी निम्रता ते गुरु दा हुक्म मनना है ते जिन्ने जिन्ने गुरु दा हुक्म मन लिया जो तिस पावे सो आरती होए इसलिए भाई आपा कोशिश करिए कि दुनियावी अडंबर छड़ के सच्चे नाम दे नाल जुड़न दी कोशिश करिए कल कोशिश करांगे इस तो अगला प्रकरण अगे रंभ करिए कोई रसना मानी ना रहे सारे मिलके आखो जी।

पावक अनक लख बरिया अनथोर नहीं जह जाता। चंचल मत चंचल मत बारक बपुरे की सर

वणज करन लगी। 24,000 श्वास रोज दे साडे खर्च होंदे हन, असी कदे नहीं विचारिया भई कितने कु सफल होए हन, कितने कु असी तंदियां विच उजाड़ दिते हन। साडी हट्टी लुटी जा रही है, श्वास जाया जा रहे हन, पर असी बेखबर होके विचर रहे हां। इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन, भाई तू जाग, ये जितने तेरे पसारे हन किसे काम नहीं आउन वाले। मनुख ने दो प्रसादे छकने हन, वस्त्र पहने हन और रहना है। इतनी को लोड़ मनुख दी है, पर पसारे कितने पसारी।

कुछ मनी बैठे हैं। जिस तरह कोई किसी घर विच रहिंदा होवे ते अपने आप नू मकान ही समझ लवे, जिवें ड्राइवर अपने आप नू मोटर समझ लवे, असी भी इसे तरह साडा संसार ते आउण दा जो शुभ मनोरथ है वो कुछ होर है। वो है सत दी कमाई करनी।

ते महापुरख कहन लगे हुण रहंदी दुनिया तक ए नाम दा परवाह चलदा ही रहेगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पाठ, जपजी साहिब दे पाठ, सुखमनी साहिब दे पाठ अखंड पाठ हो रहे हन, और अज दे नहीं 90-95 साल हो गए हन, ए लड़ी कदे टुटी ही नहीं। हजूर दी बाणी बख्श

मन दा गुलाम होयो तो साडे मन दे साडे गुलामां दा गुलाम ही तू होयो ना। जिन्हां ने अपने मन नू गुलाम बना के चंगे पासे मन नू लाया, आत्मा नू कीर्तन दा भोजन दिता है, वो सदा लई अमर हो गए। जिवें भाई साहब कहंदे ने कि गुरमुख हमेशा जीते हैं, मरते कभी नहीं वो, जिनकी जुबां पे हाँ।